नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा ब्रिद करता और दर्पण अगंग ओ हरता परम परम परमेश्वर पुरुष पाल सदा सर्वदा सिद्धाता दयाल अशेदीय भेदीय नाम अकाम समस्तोपराजी समस्तस्तामंग तिराजो चाचरी छंद जले हैं तले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं आजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ती निदान नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो महमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं

काल कारण है, सर्वोबारण है, त्रित के तन है, जग के कर्ण है, मन मानी है, जग जानी है, सर्वम पर है, सर्वम कर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है,

करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमते सुर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है पाप भंजन है अर्गंजन है रे तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट की पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तहारा आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद वरवालम

बचाओ भाई। संबत 1700 पणिजय 8003 के हित जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत ना।

सब सेखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ जी मान्यो प्रगट ग्रां की देह जो प्रभु को मिल बोझ है खोज शब्द में।

पितर वग कति प्रणवत नानक हुकम पछाण सुख हुए दिन रति वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित कलयुग के जहाज शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने कृपा की है गुरु चरणा की हाजिरी भर रहे हाँ। पातशाह जी की अमृतमई बाणी का रस भिन्ना कीर्तन श्रवण किया है। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मिलावहो नाम देहो आधारे। तीजे गुरदेव गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी है। सोरठ राग विच ये शब्द है अरदास बेनती दे रूप विच कि हे हरि हे रब जी परमात्मा जी तुसी साडे ते एक कृपा करो। की कृपा करो? सतगुर दाता मेल मिलावहो।

वै गुंग जतन करे तो पी सरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गमन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय।

प्रभु बन आई, साध के संग न कबहूं तावै। साध के संग सदा सुख पावै, साध संग बसत अगोचर लहै। साधु कै संग अजर सहै, साध कै संग बसे थान ऊचै। साधु कै संग मैल पहुचै, साध के संग दृढ़ सब धर्म। साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान। नानक साधु कै कुरबान, साध के संग सब कुल उधारे। साध संग

का निर्मल मन, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।

कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भरमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सर होते।

जाप जिन प्रभ जाता सो शोभावंत सगल संसार उदरै तिनमंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे मिल ले कृपाल गुर का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करे बड़ पागे।

0: के सारे
1: मात पिता नू साक प्यारे देन वधाइयां रल के सारे
0: माता पिता नू साक सब प्यारे देन बधाइयां रल के सारे
1: माता पिता नू साख सब प्यारे देन बधाइयां रल के सारे
0: भागा वाली माता ता भागा वाली माता ता पुत उत्तो बारी जाए
1: गुरु नानक दी कुड़माई दे अज जान

0: पारे सुन के साधु संत प्यारे
1: सुल्तानपुरे तो धरती ते सुल्तानपुरे दी धरती ते सब दूरों

सहाय। अर्जुन हर गोविंदरो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइया जह डिठे सब दुख जाय। तीक बहादुर सिमरिया करनुर दया बताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय।